बसंत स्वर्ग लोक है जित ते परथमणी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है। बसंत स्वर्ग लोक है जित ते परथमी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है। कौतक कोड़ तमस्या चेतन आवस नाऊं नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाऊ। कौतक कोड़ तमस्या चेतन आवस नाऊं नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़।

0: गत कही न जाए, जी को कहे पिछे पछताए।
1: कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का वह करन विचार।
0: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
1: मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुद।
0: मन्ने मुह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए।
1: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
0: मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत्त स्यों परगट जाए।

0: मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक भावे ना भिख।
1: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
0: पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे

0: प्रकाश्य नंगं स्वरूपे भंगं विभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते
0: नामित्र पंगितर कामंडर पंगी स्वरूपे सर्वांगी अनुपे
1: न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते
0: श्रीकां मितो मी कसदैवं प्रभा जाहे अजाहे
1: भगवती शांत वै प्रसाद
0: तजार जूर के हाजर जूरे में सुसलाम समस्तल कलाम है
1: कि साहेब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम
0: है जी दंदा के राज करेंदे करीमल कमाल है कुसनल जमाल है
1: गनीमल खराज है गरीबल नवाज है हरीफल शिकान है हरासल फिकान है
0: वृणाश समस्तल निवास गंजन गनीमल जाय करीम है
1: समस्तल जुबा है के साहेब के राह है के नरकन पर नास है वैसल निवास
0: सर्व भगवान मेश्वर वान तमाम तुमीज समस्तल अजी जाय
1: परमीश है समस्तल अधीश है अदेशल अलेख है अमेशल अभेक है
0: जमा अमी कलीम है करीमल कमाल है के जुरत जमाल है
1: ये अचलंग प्रकाश है के मितो सबास है के अजब स्वरूप है के मितो
0: मितो बसंत क्या तुम ब्रह्मा के चलंगा ना के मितो अभंग है
1: मद पाठ शंत व प्रसाद मन
0: प्रणाम गुणगान मुदा मरवर गांज हर नर पर भंज
1: अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड वर्नर अमंड
0: अनुभव मन मन प्रकाश गुणगान प्रणाम जल थर मुदाम
1: आंची जी अंग आसने अपंग उपमा पार गत मित
0: जल थल मन दस विस भंज जल थल मन दस विस बेअंत
1: अनुभव नास तिरथ त्रास आ जान बाहो एक सदा हो
0: ओंकार कथनी नाद खल खंड ख्याल कर बरकाल
1: कर कर प्रणाम चित चरण नाम आंची जगात आजीज ना बात
0: जगात अंज बात अंटट भंडार अंठट पार
1: आठीत धर्म हाथ टीत कर्म अन बन अनंत दाता महंत हर बोल मना शंत व प्रसाद
0: काले और काले खल खंडन है मंडन है
1: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बारण है
0: तरण जग करण है मन मान जग जान है
1: सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वासे है सर्वनाश है
0: संग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
1: ब्रह्मंडस है अखल खंड से परते पर है करना
0: दपा दपा दपा थपा कृता कृत अमृता अमृत है
1: अमृता अमृत है करना कृत है कृता कृत है तरनी
0: अमृतेश्वर परमेश्वर कृता कृत अमृता अमृत है
1: अजबा कृत है अमृता अमृत है न नायक है खल खायक
0: संग पर करुणालन अपनायक है सर्पायक है
1: पापंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन
0: है सर्वाकृता करता कर हरता हर
1: है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जस के जसे पुचंग प्रयात
0: नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज
0: नमो राज संतांशु शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान
0: नमो युद्ध नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग
0: लंका रूपे लंकर लंके नमो आशासन भंग भंगे
1: अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अछरी
0: अबू
1: अजू अनास काल
0: पांच पांच लाख पख
1: अकाल दयाल अलेख पेख
0: नाम काम घाट
1: अनाथे परमाथे अजूनी
0: अमोनी रंगिन रूपिन रेखे
1: अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पुचंग प्रयात
0: समस्तल प्रणामे समस्तल प्रणाश अंजल नामे समस्तल निवासी
1: निरकामंग बैपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदर्मंग
0: सदा सत्यान स्तंग प्रणासी करिमुड़क निंदा समस्तल निवासी
1: अजाय बैपूते गजाय बगनी में हरियम करियम करीमल रहीम
0: चतर चक्रवर्ती
1: चतर चक्र भुक्ते स्वयंभव स्वांग सर्वदा

0: को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को पेद न पायो।
1: भक्त ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कबीरवाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा।
0: चंदन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपाला।
1: दुख सब तुम काबू आ पात मोहि बचावो।
0: सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करता।
1: मोर चरण कर दे करिए सब बैरन कुआ संगरिए।
0: पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे।
1: शाड़ पे वरण त्याऊ जो वर चाऊ तुम ते पाऊं।
0: सेवक सेखा हमारे तारिये चुन चुन सतर हमारे
1: आपाद मुझे बरिये मरण काल का त्रास निवरिये।
0: पूजो सदा हमारे पच्छा श्रीय तो जो करियो
1: राख ले रख नारे साहिब संत साहिब प्यारे।
0: दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस
1: काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा
0: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया
1: शिव की वेदराज ब्रह्मा जी थियो।
0: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताई हमारा।
1: जवन काल सब जगत बनायो देव दान जचन पजायो।
0: हा दंते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा।
1: नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी।
0: शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मो बद कियो।
1: कट के अंतर की जात पले ब्रे की पीर पिशानत।
0: जीती ते कुंचरी अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
1: दुख पाए दुखी सुख पाए साधन के सुखी।
0: एक एक की पीर पिशाने कट कट के पट पट की
1: जाने। जब कल करा करता रा प्रजा तरतब दिए पारा।
0: जब आ करख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ।
1: बदन सिरट सब तारा आप अपनी बूझ उचार है।
0: तुम सब ही ते रहतन रालम जानत भेद भेद अरालम।
1: नाम कारण रलाम बाद नीलनाद संभ।
0: ताका मूड अचारत पेदा जाको पेवन पावत
1: पेदा। ताकु कर पाहन अनुमानत मा मूड कश

0: सारा कै विध सजा प्रथम संसारा
1: अंड
0: जे रज से तज कीनी उत्पज खान बहोरच दीनी
1: भुला जाओ बैठा कौ भयो शंकर कैठा
0: संग्री शिष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप संयम
1: तम करू सिको बाल सिख संगरो
0: दुश्चिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण
1: दाता जस तो चल सरनी परितन के दोष दुख तुव मरे
0: मूरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब
1: कल को कुवार ते ता काल नय है
0: रक्षा होए ताई सब काला दुष्ट रिष्ट टरे तत्काल
1: पद संजय निहारो ताके ताव तनक मुहर हो
0: रेद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट चाश में सके न

0: आपका तो विकस सब तू है जन जग तू पाया।
1: कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया।
0: जन अमृत खोज सुमृत गुर ते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया।
0: तो दो पाए कुबेक परसने आया।
1: लाभ लो अंकार चुका सतगुरु पल्ला पाया।
0: जिसनो आत उठा तन अमृत गुर ते पाया।
1: भक्ता की चाल नराली चला नराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना।
0: अंकार ता तृष्णा बहुत ना बोलना।
1: खनियो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना।
0: प्रसाद जिनी आप जहर वासना समानी।
1: कहे नानक चाल भक्ता जुगो जुग नराली।
0: चला तो चलो स्वामी और क्या जाना गुण तेरे।
1: जिम तू चलाए ते वे चले जिन्ना मार्ग पावे।
0: जिन्ना बुलाए से हर हर सदा त्यावे।
1: जिसनू कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
0: सच्चे साहिब जो भावत वे चलावे।
1: यो सोइला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोइला सतगुरु सुनाया।
0: तिलक मन वसे जंतरों लिखियाया।
1: एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली किने ना पाया।
0: शब्द सोइला सतगुरु सुनाया।
1: पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया।
0: पवित गुरमुख जनी त्याया।
1: पवित माता पिता कुटुंब सहित सियो पवित संगत सवाइया।
0: सुन दे पवित से पवित जिन्नी मन वसाया।
1: कहे नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया।
0: सहज न उपजे बिन सहज सहसा ना जाए।
1: ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए।
0: सहज जी उमड़ी ने कि संजम धोता जाए।
1: मन तो बो शब्द लागो हर सियो रहो चित लाए।
0: गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा बजाए।
1: जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया।
0: वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया।
1: बेटा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यो बैतालिया।
0: सच जा कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी।
0: सोचा नहीं मनसा सच समानी।
1: जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले से बन जारे।
0: जन्मान निर्मल सदा राय गुरु नाले।
1: जेको सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख से कोई जियो रहे गुर नाले।
0: हृदयता यंत्र आत्मा संभाले।
1: आप छड़ सदा रहे परने गुरबिन अवर न जाने होए।
0: संतोष हो सक सन्मुख होए।
1: जेको गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे।
0: मुक्त न और था क्यों पूछो भविकियां जाए।
1: अनेक जूनी परमावे बिन सतगुर मुक्त ना पाए।
0: मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए।
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए।
0: सतगुरु के प्यार गावो सच्ची बाणी।
1: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी।
0: कर्म हो हृदय तना समाणी।
1: पीवो अमृत सदा रो हर रंग जपियो सारंग बाणी।
0: सदा गावो सच्ची बाणी।
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी।
0: कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी।
1: हर हर नित करे रसना कहया कछु ना जानी।
0: कहर लया मैं बोलन पैरवाणी।
1: कहे नानक सतगुरु वाजो होर

को सिमराय सेवत बंते प्रभु को सिमराय जन प्रवान प्रभु को सिमराय फिर प्रभु प्रधान प्रभु को सिमराय से बेमुताजे प्रभु को सिमराय से सर्व कराजे प्रभु को सिमराय से सुखवासी प्रभु को सिमराय सदा बिनासी सिमरन ते लाग जन आप दयाला नानक जन की मंगार वाला प्रभु को सिमराय से परे उपकारी प्रभु को सिमराय तुम सद बलियारी प्रभु सिमरै से मुख सुहावे प्रभु सिमरै तिन सुख ब्यावे प्रभु सिमरै तिन आत्म दिता प्रभु सिमरै तिन नमन रिता प्रभु को सिमरै तिन अंध कनेरे प्रभु सिमरै बिसे अनेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु का सिमरन कार्ज पूरे।

मार्ग जात केला तया नाथ गोसला सनम राधे नान ग्रम प्रमुद पया छूट ने गोल बाई नंद पत पार पराई अनक बिगिंदया सुंगार हर का नाम दकाल उधार अनक जोंद नमै मृदाम नाम जपत पावै विश्राम होमै लंब लक बुन धोवै।

अनुप्रकारस्पदे कैकोटपुजारी कैकोटाचार बिहारी कैकोटपतीर्थवासे कैकोटपणपरमे उदासे कैकोट वेद के स्रोते कैकोट तभी सरहोते कैकोटातंत्यंतर कैकोट कवका विचार कई कोट नवतन नाम त्याव नानक करते कांत न पाव कई कोट पय मानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिज्ञात निकोर कई कोट पर द्रव कुहिर कई कोट पर दुख न कर कई कोट माय श्रमाए कई कोट प्रदेश माए जित जित लाव तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट से जति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सरोव पाए कई कोट पाथर बिरखण जाए कई कोट पौन पानी बै संतर कई कोट दे सुमंडल कई कोट सिर सुर नखेत्र कई कोट देव दानिंदर सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतार नानक जिस जिस भाव है तिस दे निस्तार कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण समृत अरसासत कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट के चिरजीव कई कोट गिरी मेर

नानक ते जन ना मिले किन मैनी कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दिस कछन आवे तिस तत्काल दज सुभावे जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखन कने जगदी जो अपने सब दिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बन त्या बनाई नानक जी वे देख बड़ा इसका बल नहीं सहात करम क्रम सर्व कुणनाथ आगे अकारी बपरा जियो जो दिस भावे सोपन थियो कहु उच निज में बस कहु सो हर खरंगस कहु निंचंद बिहार कहु उपकाश बिहार कहु बेता ब्रह्मचार नानक मिलावन हार कहु नृत करे वो पात कहु सोए रह दिन रात कहु मां क्रोध कराल कहु सर्व की उतरवाल कहु हुए भाई बटराज कहु पेखारी निज का साजा कहु आप कीर्त में आवै कहु भला भला कहावै ज्यो प्रभला खेती राय गुरु प्रसाद नानक सज कह कहु होए पंडित करे विख्यान कहु मोहन तारी लाभ दयान कहु तार तीर्थ स्नान कहु सिर सदमु ज्ञान कहु कीड़ हस्पतंग हो जी आन जन्म परमय परमैया नाना रूप जो सोंग दिखावे जो प्रभाव तेन सावे जो दि भावे सोई हुई नानक दूजा वर्ण कोय कहु सा संगते पावे सत्सान दे बोल में आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस नानक नहीं विनाश मंत्र नाम ते करांगे सदा से पारम के संग जो जल में जलिया इकटन त्यो ज्योति संग जो समान मिट के गवन पाए विश्राम नानक प्रभु के सतगुरु वान सलोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अंकारिया नानक गर्भ गले अस्पदे जिसका अंतर राजमान सो नरक पाती हो सो आन जो जाने मैं जो बनवान सो तिस्ता का जानते आपस को करवंत कावे जनमरे भोजन प्रमावे तान भूमका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा के आन कर कृपा जिसके हृदय गरीबी उसावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे तान मनता कर करवावे तिन समा का संग न जावे बलस करमान को ऊपर करे आस बल पितरता का विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हो जाए पसमंत किसी ने बदया अंकारी धर्म रह करे कुवारी गुरु प्रसाद जा कमटे मान सो जनान दरगे गुरुआन कोट कर्म करे उतारे शर्म पावे सरले विरतार इन तपस्या करे अंकार नरक सरो फिर फिर अवतार आनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर दर कैसे गवे आपस को जो पला गावे तुझे बुलाई निपुण आवे सर्व किरे जा कमन होए कहु नानक ताकि निर्मल सोए जब लोग जाने मुझते का सोए तब जो सुनाई कोय जावे जाने मैं कुछ करता तब लोग अर्जुन में फिरता जब तारे को बैरी में तब लोग ने चलना ही चेत जब लोग मोह मगन संगमाई तब लोग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद अणको झूठे सास कटे लाख कुड़तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अणभोग विख्या के करे न तृतावे खपका मरे बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मर्त फिरते सब गाजे नारन संगुर सुर सुखय बड़वागी से प्राप्त होए करण ग्रामण या पे आप सदा सदा नान कर जाओ करण ग्रामण करने यार इसके आद का विचार जैसे जैसी देश कर दास आवे आपे आप अवरोस होए जो कुछ गिन सपने रंग सब ते दूर सब के संग पूजे देखे करे विवेक आपे कपे अनेक मरण बिन से अवन जाए नानक सदी रह समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचा सब के साथ आप किनो अपन विस्तार सब का सुख करने यार उस ते भिन्न कहो कुछ होए थान तन अंतर एक कैसो होए आपने जल दाव करने यार कहो ते करे रंगे अपार मन में अपने अपने माय नानी कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद कृपा ख्याल सच सच सत सब किन्ना कुट मदे किन विरले चिन्ना भला भला भला तरऊ वा सुंदर अपार नो निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण खयानी पोत्र पोत्र पोत्र नहीं नाम जप नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन पर सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार संत का दुख नियार जगटे संत का दुखन जम तने छूटे संत का दुखन सुख छा जाए संत का दुखन नरक में पाए संत का दुखन मातो मिले संत का दुखन सो बाधेन संत कहते कर रखे न कोय है संत के दुखन दान पर सोए है संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग भीतर है संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जलोवे संतन के दुखन दिशन जले संत के संतन के दुखन सर्व जुन पाए संत के दुख तिरक जुन कृपाए संत के दुख दिशन जले संत के दुखन सब को चले संत के दुखन ते सब जाए संत को दुखन इस न जाए संत दुखी का ताव को नाए नानक संत भाव तो विगत पाए संत कनंद कुमार तताए संत कनंद कंड कन भाए संत कनंद कुमार तारा संत कनु परमेश्वर मारा संत कनंद ग्राज तेन संत कनंद के दुख यार दीन संत कनंद को सर्व रोग संत कनंद को सदा विजोग

संत कदो की उद्यान ब्रह्माई संत कदो की जुड़पाई है संत कदो की अंतर ते तोता जो सास बिन मृत कीलो था संत कदो की जड़ की जनाया अपन भी जापे खाए संत कदो की करुण राखन हार नानक संत पात ले भार संत कदो की अम्बल लाए तो जो तल जो जल भी मचरी तड़फड़ाए संत कदो की भूखा नहीं राजे संत का जो पाव किन्ने तरापे संत कदो की चढ़े केला जो मुआर तिलखी तुम्हारे दुहेला संत कदो की धर्म तरह संत गुरु कैत कीर्तन कह तुरी पया नानक ज्योत सुभावै सोए थे संत कदो की गुरु हो जाए संत कदो की गुदर के मल सजाए संत कदो की सदा सकाई संत को की नमरण जवाई संत के दुखी पूजन आसा संत कदो कीड़ चले निराशा संत कदो नतिष्ठे कोय जैसा भावे तैसा कोई आए पया कीर्तन मेटे कोय है नानक जाने सच्चा सोए सब कर दुख्यो करण यार सदा सदा तुसको नमस्कार प्रभु की सुध करो दिन रात इस ध्याओ सात गिरा सब गज वर्ते दिखा किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेला करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड भागी नानक जन से सलोक तजो से आनम सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पो जाय अष्टपद मानो की टैग बुर्ते सब जान दे उनको एक भगवान जिस कह दिए रहे गाय बोण तिसने लागे आए मारे राखे को मानो के सुनाई हाथ तिसका हुकुम सुख होय तिसका नाम रखंड प्रय सिमर सिमर सिमर प्रस होय नानक विघ्न लागे कोय उस्ताद मन में करन कार कर मन मेरे सदव्यहार निर्मल सुन अमृत भी सो अल्लाह कर ले जीव नैनु बे ठाकुर का रंग सा संग सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे भाव जो पी अरविंद कर हर कर्म सरुण हर कथार दरगे नानको जन्म मथा बड़भागी तेजियां जग माए सदा सदार के गुण गाए राम नाम जो करे विचार सेतनवंत गुणी संसार मन तन मुख बुले मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुद के सो जी जाने नाम संग जिसका मन माने नानक तिने निरंजन जाने गुर प्रसाद अपने असूजे तिसकी जानो तिसन बूझे सात संग हर हर जस कह सर्व लोक ते हर धन रहत आन दिन कीर्तन करो खे आन किस्त मै सोए निर्वाण एको प्रतिजन की आसा ते कटेजन की वासा पार किस्मन भूख नानक तेन लागे दो जिसको हर भ मंज त्या सो संसला नहीं डुलावे जिस प्रभु ने कृपा करे सो सो को किस डरे जैसा सत सत अस तैसा दिशा ने कर में आप समाए सोद सोद सोद सिजिया गुरु प्रसाद तासा बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुकुम सोए असूल है न कि जन्मे न कि मरे अपन चलते आप ही करे आम जाम दिष्ट अंदिष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल में आप अंज गुरु ताप ताप नासी नाई किस कंड तारन तारे ब्रह्मांडल प्रताप आप जफाय नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सो भावंत सकल संसार उदर तन मंत प्रभु कै सेवक दुख सारण प्रभु कै सेवक दुख प्रभु कै सेवक प्रभु के सेवक सब उदाहरण प्रभु के सेवक दूप सारण आपे मेल लै कृपाल गुरु का शब्द पे निहाल मुखी सेवा सोई लागे इसनु कृपा करे बड़फागे नाम जोत पा विश्राम नानक तिन पुर को तुम कर मान जो कुछ करे सुप्रभु के रंग सदा सब से हर संग सह सवाए सोए करणे हर पछाणे सोए प्रभु का किया जनमी लगाना जैसा सा तैसा दिशाना जिस तब जय तुम्हारे समाए सुगुण दान हूं बने आप सुगो आप दिनों मान नानक प्रभु जाने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रण बिरथा जानन हार जा कै सिमरन त्रिय नानक तिस बल हार टूटी गणन हर गोपाल सर्व जी आपे प्रताप सकल चिंता सुन माए तिस ते विरता कोई नाय रे मन मेरे सदार जाप अवनासी प्रभु आपे आपन की अक्ष नाय जय सो प्राणी लोचे कोय तिस नाय तेरे कुछ काम कत नाम जापे कर नाम रूप हन तो नाई मोहे प्रभु की जो सल कर सोए धन मंता हो गया को कर बै जन सब की तिसका दिया दर पे असु राजे को कावे प्रभु की कला बिना कह दावे जे कोई बैदा तार ते दिन हर जाने गौर जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सदा रोग जो मंदिर को थामे थमन तो गुर का शब्द मने थमन जो पाखा नाव चढ़ तरे प्राणी गुर चन लगत निस्तरे
ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਕ ਪਾਵੇ ਤੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪੋਟਾਵੇ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਚੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਰਲਾਈ ਪੁਰੂ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਬਣਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੋ ਤੇ ਸਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੈ ਸੋਏ ਸੁਖਮਾਨ ਭੁੱਲਾ ਕਾਹੇ ਫਰੇ ਅਜਾਣ ਕੌਣ ਵਸਤਾਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਲਫਟੋ ਰਸ ਲੋਇ ਫਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਏ ਨਾਨਕ ਵਾਸੇ ਧੀ ਕਰ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਦੁਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਜ ਮਾਨ ਲੇ ਮਨ ਮੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾ ਸੰਚਾਲਿਆ ਵਰਤਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਇ ਮੁਖ ਉਜਲਾੜ ਦਰ ਕਹਿ ਸੋਇ ਵਪਾਰ ਬਿੜਾ ਵਪਾਰੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਸਦ ਬਲਹਾਰ ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਧੋਏ ਤੋ ਵੀ ਅਰ ਸਾਧੂ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧਕ ਧੁਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਵਰਜਾਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੋੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਅਣੁਪ ਗੰਦੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਤੈ ਦਰਿਆ ਸਰਵ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵ ਤੇ ਹਾਰ ਸਰਨ ਦਾਨ ਜਾਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈ ਨਾ ਪਾਏ ਸਭ ਕਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਕਰਨੇ ਜੋ ਗਏ ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਸਰ ਹੋਣ ਹੋ ਗਏ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਨ ਲੈਣੇ ਸਭ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੁਖ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਿਨੇ ਆਵੇ ਹਰ ਭਵ ਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤੈ ਲੋਏ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਮੁਖ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੇ ਸੱਚ

जी जंत की ठाकुराय आपे वर्तनार नानके को पसरिया दूजा कै दृष्टा रसपति आप कथे आप सुने हार आपे का विस्तार जाति भवत सृष्ट उपाय अपने पाने लै समाए तुम दे भिन्न नहीं कुछ होए आपन सुसक जगत पुरोए जा को प्रभु जो आप जाए सतनाम सोजन पाए सो समदर्शी तत कविता नानक सगल सृष्ट का जेता जी अंतर सबता के आदिन दयाल नाथ को नाथ जिस राके दिस को न मारे सो मुगन सारे तिस्त अवर कहाँ को जाए सब श्रेक निरंजन राय जी की जुग जाके सब हाथ अंतर बार जानु साध गुण दान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूरे दया सब उपरोत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जा

जागुर देखा सामने सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

मन तन शीतल होए महला पंजवा। लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे ना कोए, जिस गुर

किलविक सब विनाश होए होन सिमरत गोविंद। हर मार्ग साधु दस्या जपिए गुरमंत। माया स्वाद सब फीकिया हर मन पावंद। त्याए नानक परमेसर जिन दित्ती जिंद। सलोक महला पंजवा। वत लगी सच्चे नाम की जो भी जैसो खाए। तिसे परापत नानका जिसनु लिखिया आए। महला पंजवा। मंगणा ता सच एक जिस तुस देवै आ।

नानक बल जास। सलोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मिहो उठा सहज सुपाए। अन्न तन बहुत उपजया पृथ्वी रजी तृप्त अगाए। सदा सदा गुण उचरै दुख दालद गया बलाए। पूरब लिखिया पाया मिलया तिसै रजाए। परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याए।

जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे, साध संग जिन पाया से बड़ पागे, नाय विसरे त्रिग जीवना टूटे कच तागे, नानक तूड़ पुनीत साध लख कोट पिरागे। सलोक महल।

हर संग समावो, दुख न देई किसे जी पत स्यो कर जावो, पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। सलोक दोहा महला पंजवा। एक जैसा जन मैं किया सर्ब कला समरथ, जियो हमारा खनिय हर मंथन संदड़ी वथ। महला पंजवा।

जप जप जीव संत जन पापा मल तोवे, चरण कमल हृदय वसै संकट सब खोवे। गुरपुरा जिस पेटिए जम गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म न रोवे। प्रभ दरस प्यास नानक कड़ी कृपा कर देवे। सलोक डखना महला पंजवा, पूरी परम वंजन प्री मोहब्बत हिक तू।

हंसा सेती चित उलास है, कुकड़ की ओडारी पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुनिए, रचना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे, लाए पावनी से हस्त पविता अठसठ तीरथ मजना सब पुन तिन कीता, संसार सागर ते उदरे बिख्या कर जीता, नानक लड़ लाए उदारियन दोए सेव अमीता। सलोक महला पंजवा, तंदड़े कुलाहा चित न आवे हेकड़ो, नानक से ही तन फुटन जिना साई विसरे। महला पंजवा, प्रेतों की तोन देवता तिन करण हारे, सबे सिख उबारियन प्रभ काज सवारे, निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे, नानक का प्रभ वड़ा है आप साज सवारे पौड़ी, प्रभ बेअंत किछ अंत नाही सब तिसै करना, अगम अगोचर साहेबो जिया का परना, हस्त दे परताप दा हस्त दे प्रितपाल दा, परण पोखण करना मेहरवान बख्शंद आप जप सच्चे तरना, जोत द पावे सो पला नानक दास सरना। सलोक महला पंजवा, तिना पोख ना का रही जिसका प्रभ है सोए, नानक चरणी लग्या उदरे सब कोई। महला पंजवा,

नानक मन तन जाओ एहो नित प्रभ को लोड़े सुध कीचे। राग गौड़ी भगता की बाणी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। गौड़ी ग्वारेरी श्री कबीर जियो के पदे 14। अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ। मन मारण कन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए। जे पावक सुर नर है जारे, राम उदक जन जलत उबारे। पव सागर सुख सागर माही, पीवर हे जल निखुटत नाही।

तू सतगुर हो नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जान्या, तब लोग काहे दुख मान्या। हम अपत है अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात का

चाम जब नहीं चीनस आत्म राम रहाऊ। मुंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिया पाई खुसरे को ना परम गत पाई। कहो कभी सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी संध्या प्रात स्नान कराही जो पै दादर पानी माही। जो पै राम नाम रत नाही ते सब धर्म राय कै जाही। रहाओ काया रत बहु रूप।

जन्म मत खोए रहाओ। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहो तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म बिचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। गौड़ी कबीर जी। अंधकार सुख कबे न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है, रहा हो रोई है वाहिगुरु।

अनेक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन मर्दन अंगा, सोतन जले काठ के संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिन से गो रूप देखे सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी, अवर मुए क्या सोग करी जय, तो की जय जो आपन जी जय। मैं ना मरो मरबो संसारा, अब मोहे मिलो है जीवा ननहारा। रहाओ या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनहारी, टूटी लाज परे मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहा

जाए कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चुंगे नित पेड़। राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुर सो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे, ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना। पूर्व जन्म हो तप काहीना, अब कहो राम कवन गत मोरी। तजिए ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत बरस तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगर मगहर सम बिचारी, ओछी पगत के

मरती बार कस बांध्यो चोर। गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बास सुगंध बसाई। कहत कबीर चेत रे अंदर।

साकत उलट सो जन पे जीता। अब मोहे सर्ब कुशल कर मान्या, शांत पई जब गोविंद जान्या रहाओ। तन में होती कोट उपाद, उलट पई सुख सहज समाद। आप पछाने आपे आप, रोग ना व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ।

कर जाता, शब्द अतीत अनाहद राता, जिन राम जानिया तिन्हें पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे।

सोचा समसर एहो ब्योहारा तत विचार क्या अवर विचारा अप तेज बाए पृथ्वी अकासा ऐसी रहत रहो हर पासा कह कबीर निरंजन त्यावो तित कर जाओ जे बहर न आवो गौड़ी कबीर जी ते पदे कंचन।

जानिया सहज सुपाए मेरा मन मानिया रहाओ। प्रिथ में कथ कथ अंत न पाया, प्रथ में वाहिगुरु ब्रह्म में कथ कथ अंत न पाया। राम भगत बैठे कर आया, कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी। जय मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द परगासिया। अब कैसे मरो मरन मन।

सोजल निर्मल कथित कबीर गौड़ी कबीर जी। जे कुल पूत ना ज्ञान बिचारी विधवा कस ना पई महतारी जे नर राम भगत नहीं सादी जनमत कस ना मोह अपराधी रहाओ मुच मुच गर्भ किए कीन बचिया बुढ़ बड़ पुज रूप जीवे जग मजिया कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप ना बिना जैसे कुज कुबज क्रूप। गौड़ी कबीर जी। जो जन लहे खसम का नाओ तिन कै सद बलिहारे जाओ सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो पाई मेरे मन पावे रहाओ जे कट राम रेहा परपूर तिन की पग पंकज हम तूर जात जुलाहा मत की तीर सहज सहज गुण रमै कबीर। गौड़ी कबीर जी। गगन रसाल चुए मेरी पाठी संच महारस तन पे आकाठी वहां को कहिए सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ सहज कलालन ज्यो मिल आई आनंद माते अंदिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अनपौ पाया। गौड़ी कबीर जी। मन का सुभाव मने बे

ਆਪਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਾਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹ, ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਿਮਰਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹਿ ਮਿਟਾਵਉ। ਸਿਮਰਉ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰੇ ਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਗਣਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਧਾਖਿਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕਾਖਿਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਕੀ ਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕੁਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਵਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਵਣ ਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਨੋ ਨਿਦ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਾ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਸ਼ਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੈ ਸੁਝਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਰਦ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਰਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੋਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨੇ ਆਪ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਭਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੋਗ ਬਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਘਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਵਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਦਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬੂ ਨ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਏ ਚਲੇ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹ ਝੁਨਕਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤੰਜਨ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇ ਦੋ ਪਾਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭੈ ਸਦ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਬਦ ਧਾਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਉਹ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਕਟਕਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਯੂ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਪਾਈ, ਮਨੁਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲਾਏ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲਾਏ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਤਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਨ ਮਾਹ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਬਣੈ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨੀ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰਾਰਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਉ ਸੁਖ ਹਨੇਰੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਈ ਸੁਖੀਆ। ਲਾ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰ। ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾਮ ਬੁਝਾਵਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗਾਵਾਏ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਜਾਤ ਕੇਲਾ, ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਤਸਵੇਲਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ। ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਵਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ। ਅਨਕ ਬਿਗੰਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ। ਅਨਕ ਜੂਨ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾ। ਹਉ ਮੈ ਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨ ਧੋਵਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਨ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਜੇ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾਂਦ ਗੁਬਾਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਹ ਜੀ ਆ ਰਾਜ। ਹਾਂ ਪੰਥਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ। ਜੈ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮੰਤ ਜੀ ਆ ਕਰ ਖਾਏ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾਏ। ਭਗ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਉ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਉ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ। ਹਰ ਜਸ ਕਰ ਸੰਦਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖ ਸਾਧ ਕਮਾਤ।
हर जन कै हर नाम निधानु पार ब्रह्म जन कीनु धानु मन तन रंग रति रंग विकै नानक जन कै बिरत विकार का नाम जन को मुक्त जोगत हर कै नाम जन को त्रिपत भोगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालिक जीना हर धन जन को आप प्रभु दीना हर हर जन कै ऊठ सताणी हर प्रदा जन अवरण जानी ओत भोजन हर रस दाते सुन समाध नाम रस माते आठ पै जन हर हर जप हर का भगत प्रगट निशा पै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तिन हर हर गुण गाम सब त्यू तम हर की खदा नाम सुन तु दर दुख लथा नाम की महिमा संतरित बसाए संत प्रदा दुर सब नसाए संत का संग वड भागी पाई आए संत की सेवा नाम ते आई आए नाम दुल का शबर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शस्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूज सनाई हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खाट शास्त्र सिमरत बखया जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाय हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी कबार नौ खंड पृथ्वी फिर चर जीव माओ दास पीसर थी वह अग्न माय हो मत प्राण कन कस वह ब्रभुम दान न्यौली कर्म करे बहु आसन जैन मार संयमत साधन नेम खो नेम कर शरीर कटा वह तो पी हो मैं महल न जा वह हर के नाम संसर कश नाही नान गुरमुख नाम जब गत पाई मान गाम न तीर दे छुट्टा गर्व को मान न मनते उठाए सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मनते कपून बिखिया टर जल तो वह बहु देह अनी शुद्ध का हो काची पीत मन हर के नाव की महिमा ऊच नानक ना उदरे पातत बहु मूच बहुत स्यान पू जम का भव ब्या पय अनक जतन कर तृष्ण धरा पय भेख अनेक अगनी बुझय कोट पा दर गनी सजाए छूट सुनाय पय आल मोह ब्या पय माया जल अवर कर तू सगली जम डान गोविंद भजन बिन तल नी मान हर का नाम जब दुख जाई नानक बोलै सह सुभाई चार पदार्थ जे को मांगै साधना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा रोरै साध संग हौं मैं छोरै जे को जन्म मरण ते डराय सा जना की शरणी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बाल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाणै नीचा सो गणिया सब ते ऊंचा जाका मन होय सगल कीना हर हर नाम तन कट कट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल श्रेष्ठ साज ना सुख दुख जन सम दृष्टि तउ नानक पाप नी लेपा निरतन को तन तेरो नाउ थावे को नाउ तेरा था निमान को प्रभु तेरो मान सगल कटा को देवो दान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गद में जानो आपे अपन संग आप प्रभु राते तुमरी ओस्त तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत माल हिरिया सगल उद्यम उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बारी में अमृत बानी हर को जसो नुसन बखानी सगल थां ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यारे आनिया सो प्रभ सदा संभाल जिनकी आत चीत रख नानक ने भी नाल अष्टपदी रमैया के गुंजित बरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जंतू सास वार शिंगारिया घर भगन में जने बारिया बार वास्ता तुझे प्यार है दूध भर जोगन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ को देन निर्गुण गुण कशु न बूझै बख्श लेव तो नानक सी जय जे प्रसाद आरू पर सुख बसै सोत भरादमी बनता संघासै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव को मुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीन हथ पाव का नेत्र समंत सत्याग अवर संगरचना ऐसे दोग मुड़ंद व्यापे नानकाड लियो प्रभ व्यापे आदंत जो रख नाथ स्यो प्रीत न करे गवा जाकी सेवा नाम नित पावे ता स्यो मूढ़ा मनी लावे जो ठाकुर ससदा जूरे ताक वंदा जानत दूरे जाकी डल पावे धर गए मानस बसारे मुख दो जान सदा सदा भूलन हा नानक रख नार अपार तन त्याग उड़ी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना स्वास्थ्य कर मान जो होवन सो दूर पराना
छोड़ जाय तस्का श्रम करय संग सहाय तरप तिस परहरय चंदन ले भूतारय धोए गर्द प्रीत भस्म संग अंध कूम पतत बिकराल नान काढ़ लो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करय दिन रात बार भेख अंतर मल माया शब सुनाय कश कराय शुभाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापलु स्वानंतर अग्न बारतन स्वाह गल पात्र कैसे तरह थाउ जाका अंतर बसै प्रभु आप नानक तेजन सह समा सुनंदा कैसी मार्ग पावै कर गय लोड़ निभावै कहाँ बुझार तबूज डोरन सकई है तो समझे पूरा कहाँ विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आ सुगवन करता और करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुवावै न चीत जो बहराई तास प्रीत बलुआ के गिरे पीतर बसैन खेल माया रंग रसै दृढ़ कर मान बन प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बकार महा लोभ ध्रो व्याऊ जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं शोक नेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूत्र धारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक दे नार प्रभु छोड़ कै लागै आन सुवाए नानक न सीजई बिन नावै पात जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाचै पावै एक वस्त कारण बखोट गवावै एक पीना दे दस पी हरले तौ मूढ़ा कहु कहाँ करे जिस ताकुर स्यौ नाहीं चारा ताकु की जय सद नमस्कारा जाका मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख ताऊ मन बूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत शाह अपनी दे राज खात बीत बरता अंदोलास अपने अमान कश बाहुर साहु लिया गया नी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस से आज्ञा राख है प्रभु की आज्ञा मान माथै उसते चौगन करै निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के सर पर होव जान रे बिर की शाह स्यों रंग लाओ बिन सब मन पछतावै जोधी सहसो चालन हार लपट रेवतान अंधार बटाऊ सो जो लावे नीता को हाथ नावे के मन हर के नाम की प्रीत सुख दाई कर कृपा नान का भलय लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हो ममता माया मिथ्या राजो बंधन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माय पे खस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आप सो प्रकृत गुमान अस्त्र भग साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर नंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्भ को हर है मिथ्या नेत्र पेखत पात्र रूपाद मिथ्या रसन भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार कुताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तानी पर उपकारा मिथ्या बासलेत बिकारा बिन बुझे मिथ्या सफहे सफल दे नान खार हर नाम रे व्यर्थी सागत की आर जा साच बिना कह हो सूचा व्यर्था नाम बिना तन आंद मुख आवता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन वृथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोबिंद भजन बिन वृथे सब खाव ज्यों करपण के निरार्थ दाम धन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाव नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर का शबर कमावत मानी प्रीत मुखो गंढ लाभ तू जानन हर प्रभु पर बीन बार भेख न काहू भी नवर उपदेसा आप न कर आव जाव जन मैं मर जिसका अंतर बसा निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तन प्रभु जाता हो नानक कुंजन चरण पराता हो करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आप है मन आप करत निबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नीरा उपाव सियान सगल ते रह सब के जाने आत्म की रहत जिस पावै तसलई लड़ लाई थान थन अंतर या समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाय अमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जी प्रसाद शक्ति अमृत काय तिष्ठा गुरु को रख मन माय जी प्रसाद सुगंध तन लाभ को सिमरत परम गत पावै जी प्रसाद बसै सुख मंदिर सत्याय सदा मन अंदर जी प्रसाद गृह संग सुख बसनार पैर सिमरुत सरसना जी प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन योग जी प्रसाद पाठ टंबर हंडावत सत्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैग ताक जा सुंगा बीजय जे प्रसाद आठ मन आठ पैर तुक ताक जस गा बीजय जे प्रसाद सब को मान मुख ताको जस रसन बखाना
जे प्रसाद रू रहता धर्म मन सदा ते केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दर गय मान पावे नानक पत सेती कर जावे। जे प्रसाद रू कंचन दे लिबला उत्स राम सुनई जे प्रसाद रऊला रह तू मन पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद रे सगल छत्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभु ताकै। जे प्रसाद जको न पहुचै मन सा सा सिमरु प्रभु चै। जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहि नानक ताकि भगत करेहि। जे प्रसाद आ भूखण पहरी जाए मन ते सिमरत क्यों आलस की जाए। जे प्रसाद आसवास तस वारी मन तस प्रभु को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोय प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत सह त्याई तिसह त्याई जो एक लखाई आऊहा नानक तेरी रखा। जे प्रसाद करें पुन बहुदान मनाट पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तुम आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पात्र है गुरु प्रसाद नानक जास कहे। जे प्रसाद सुनह करण नाद जे प्रसाद पेखें बिस्माद। जे प्रसाद बोलें अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे सा प्रभ त्याग अबरकत लाग हो। गुरु प्रसाद नानक मन जग हो। जे प्रसाद तो प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल नमन हो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप जे रे मन मूर्त ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरित सह जान मन सदा जूरे। जे प्रसाद तू पावै साचू रे मन मेरी ताशो राच। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सो आप जपाए जपै सो नाउ आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मातु तुम होए सार बनधान। प्रभु तेरी माया कापो कछु न किन्हु लाया। जित जित लाभ उतत लगै हर नाथ नानक इन कहे कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता हुए। सुनमीता नानक बिनवंता सा जन की अचरज कथाष्टपदी। साधक संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत। साधक संग मिटा अभिमान साधक संग प्रगट सुग्यान। साधक संग बुझे प्रभु नेरा साध संग सबूतन बेरा। साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन। साधक महिमा वरणै कौन परानी नानक साधक शोभा ब्रह्म समानी। साधक संग गोचर मिलाए साधक संग सदा प्रफुलाए। साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सब की रीन साधक संग मनोहर बैन। साधक संग न कतु तावे साध संग अस्त मन पावे। साधक संग माया ते भैन साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सा मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग कैसो नहीं बैर साधक संग न मींगा पैर। साधक संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साधक संग नाही होताप साधक संगत जैस व्याप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबू धावै साधक संग सदा सुख पावै। साध संग वास्तव उचरड़ाए साधु कै संग जर सै। साधक संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुँचै। साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग उपाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान। साधक संग सब कोल उधार है साध संग साजन मीत कुटाम निस्तार है। साधु कै संग सो धन पावै जिस तंते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन। साधक संग सराब थान गम नानक साधक संग सफल जनम। साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल। साधक संग लूक थाराय साधक संग नरक पर हराय। साधक संगी हाँ हाँ सुहेला साध संग बिछर तार मेला। जो इच्छा सोई फल पावाए साधक संग न बिरथा जावाए। पार ब्रह्म साध रिद बसाए नानक उदरै साध सुन रसाए। साधक संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाउ। साधक संग न मंति बिसराय साध संग सर पर निस्तराय। साधक संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी। साधक संग मिटे साब रोग नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाना है जेता सुनै तेता बख्याना। साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर।
साध की शोभा का नाई अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मुचते मुची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक सबन कोई, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप, जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दोख, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान, जैसे राज रंग को लागे तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जी का, जो बसदा कौ खोद कु चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाऊ, नानक जो भाव का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञान निर्मल ते निर्मल लाऊ, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन हो प्रगाश, जैसे धरि उपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचति ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भई, नानक जन प्रभ आप करी, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्यार, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परि उपकारु माह, ब्रह्म ज्ञानी का

दर्शन पेखत उदत सृष्टा चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हारूप धन सेवा सेवक परवान